इन पागल दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल दे दो, हम पागल ही अच्छे। देर इज ए प्लेजर इन बीइंग मैड विच नन बट द मैडमैन नोज।

जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यस्तु दर्शतु श्री श्रीमद् इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी सर्वोपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यस्तु दर्शतु श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो